0: गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, आरजे अदनान आपके साथ है आपके आज के मॉर्निंग गुड करने के लिए।
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो, फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। ओहो, सैटरडे यार, शनिवार की हवा कुछ अलग होती है। मतलब कुछ बोलता है मन से कि यार काम वाम छोड़ो, बस सुकून का इंतजार करो और सुकून की चादर ओढ़कर बस सो जाओ। वैसे सैटरडे का इंतजार ना पूरे हफ्ते भर करते हैं, भले आज ना तो आपको ऑफिस जाना हो, फिर भी एकदम मूड फ्रेश होता है और दिल में एक अरमान जगते है कि यार आज ऑफिस जाना है, कल तो छुट्टी लेना है। लेकिन यार वो लोग ना तो बहुत खुश नसीब हो गए यार जिनको वीकेंड की दो छुट्टियां मिलती है, जो आज ना तो अभी तक अपने बिस्तर पर सोए हो गए और रेडियो ऑन कर गाने एंजॉय कर रहे हो गए। मतलब मुझे लगता है कि इन लोगों ने ना तो पिछले जन्म में बहुत ही अच्छा सा पुण्य कमाया होगा, इस वजह से इस जन्म में उनको कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर वीकेंड के दो छुट्टियां मिलती है। और हम जैसे लोग लगता है बहुत पापी लोग यार, हमें तो यार एक ही दिन की छुट्टी मिलती है संडे वाली। खैर आप क्या ही बोले यार, रेडियो का आवाज थोड़ा बढ़ाइएगा क्योंकि अगला गाना आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ एकदम फ्रेश मूड करने वाला, ताकि ये ताजगी भरी सैटरडे वाली मॉर्निंग आपको और सोलफुल लगे और मीठी सी लगे, क्योंकि मीठी सुबह है तो मीठे गाने होने ही चाहिए ना। सो आरजे अदनान के साथ गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, कुछ देर के बाद लौट कर आता हूँ और भी ढेर सारी बातें करने के लिए और सैटरडे एंजॉय करने के लिए। सो स्टे ट्यून विद आरजे अदनान इन द शो।

0: माझे तुझ्या मनभर सरीवर सर सरीवर सर सरीवर सर सर सर सर सरीवर सर सरीवर सर
1: किसो
2: किस्सों का कारवा आरजी अदनान के साथ ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। पूरा हफ्ता काम का प्रेशर, मीटिंग का बचा कुचा पेशेंस, ट्रैफिक का हंगामा और बॉस के नए नए तरीके का टेंट्रम। इंसान बस एक चीज ढूंढता है, वो है सुकून। आरजी अदनान को आप सुन रहे हो। मुझे याद है बचपन में जब मम्मी थक जाती थी तो वो वीकेंड पे हमें ले जाती थी एक छोटी सी जगह पर, एक नदी किनारे। वहाँ कोई शोर नहीं होता था, कोई डेडलाइन नहीं, बस पानी का हल्का हल्का बहना, मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवाओं का झोंका। वहाँ जाके मम्मी कुछ नहीं करती थी, ना फोन ना बातें, बस पेड़ के नीचे बैठ जाती थी, कभी आँख बंद करके, कभी नदी की लहरों को देखती, और हम लोग भागते खेलते हुए वहीं रहते थे। तब समझ नहीं आता था कि वो सुकून क्या होता है, पर अब जब खुद पूरे हफ्ते थक जाता हूँ तो याद आता है वो नदी का किनारा। और एक बार फिर मैं भी किसी वीकेंड फ़ोन बंद करके लोगों से दूर अपने सुकून को ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी पूरी भाग दौड़ में गुजर रही है, पर हर किसी की ज़िंदगी में एक नदी का किनारा होता ही है। चाहे वो चाय की दुकान हो, बालकनी का झूला हो, या सिर्फ एक लम्हा खुद के साथ हो। तो इस वीकेंड अपना सुकून ढूंढिएगा, क्योंकि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती है। सो ये महसूस कीजिएगा, और बस आप नहीं, आपके बॉस को भी कहिएगा कि सुकून महसूस कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। इसको भागदौड़ में मत गुजारिएगा, सुकून के लम्हे में जीते रहिएगा। किस्सों का कारवा में आरजे अदनान आपके साथ है, और ये कारवा आपको कैसा लगता है जरूर बताना। डीएम ऑन इंस्टा आरजे अदनान, एंड सुनते रहना। किस्सों का कारवा आरजे अदनान के साथ ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: बस यार आप लोगों की बहुत फरमाइश होती है और हर फरमाइश मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। So यार आज के गाने की फरमाइश आई है अमृता देशमुख जी की तरफ से इस गाने के लिए।
1: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है यार, अमृता जी ने बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है। चलिए फिर इनकी फरमाइश पूरी करते हैं। और हाँ आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश होना तो व्हाट्सएप करें 9359320080 पर 9359320080। तो इस नंबर पर आपकी फरमाइश बताइए और फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिएगा अमृता जी का फेवरेट गाना एंड सुनते रहे MGM 90.8 FM साथ।

होटल में तो हम सभी लोग खाना खाते हैं, लेकिन वो खाना सच में उतना सेफ और उतना हाइजीनिक है क्या? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है, और इसी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फिलहाल FDA एक्शन मोड पर आ चुकी है एंड अपने शहर के जितने भी होटल है ना, तो उन सभी होटल्स में चेकिंग शुरू हो चुकी है। और इस चेकिंग में कुछ ऐसे ऐसे चीजें सामने आई कि लग रहा है कि भाई साहब आज तक तो हम बस जहरीला खाना खाते थे, वेज नॉन वेज कुछ भी हो जाए हर किसी के अंदर मिलावटी है। तो ऐसी मिलावटी चीजें ना तो अपने शहर के दो होटल्स में मिली थी और कार्रवाई ऐसी शुरू है, और उन दो होटल्स के जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिए गए है। और बस होटल से नहीं, जो जूस सेंटर है वहाँ पर भी FDA फिलहाल चेकिंग कर रहा है जिस तरीके से जूस बनता है वो हाइजीनिक है या उसमें भी कुछ मिलावट तो नहीं है ना, तो इन सभी बातों को देखा जाएगा। और भी शहर में जितने भी बिजनेस है जो कि खाने से रिलेटेड है उन सभी के ऊपर FDA फिलहाल चेकिंग कर रहा है। FDA ने जो स्टूडेंट्स के लिए मेस होती है ना तो उसमें एक बार चेकिंग करना चाहिए, तो आधे से ज्यादा मेस बंद हो जाएगी अपने शहर के, क्योंकि भाई हम भी तो मेस का खाना खाते हैं और हमें पता है मेस का खाना कैसा होता है। ये क्या ही बोले अब अपने लफ्जों से, कभी खाइएगा तब आपको पता चलेगा कि दाल क्या होती है। स्टे ट्यून।

सवाल है, अगर आपको ना मतलब आपके मन से किसी सिंगर को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड देना हो तो पहला नाम कौन सा आएगा आपके दिमाग में? आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM। अभी सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने एक शानदार पहल की है, द लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले जी के नाम पर संगीत जीवन गौरव पुरस्कार शुरू किया है। ये सम्मान उन कलाकारों को दिया जाएगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित की है और हर साल 8 सितंबर यानी आशा भोसले जी के जन्मदिन पर यह अवार्ड दिया जाएगा। सच कहे तो कलाकार सिर्फ गाने नहीं गाते, वो यादें बन जाते हैं और ऐसे कलाकारों का सम्मान होना भी बहुत जरूरी है। और सौर सम्राज्ञी आशा भोसले जी के नाम पर यह अवार्ड की शुरुआत की जा रही है सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि आशा भोसले जी एक ऐसा नाम है जिसने अपनी आवाज से हर दौर, हर पीढ़ी और हर एक दिल को छुआ है। ऐसे में उनके नाम पर शुरू होने वाला यह सम्मान सच में सभी कलाकारों को एक प्रेरणा देने का काम करेगा। अब आशा भोसले जी की बात हो ही रही है तो अब आशा भोसले जी की आवाज में एक बढ़िया सा गाना हम एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: गेले खड्ड्यात.
1: खरं सांगतोय मी नाही, प्रशासनाने गेलंय. तुम्ही ऐकता आरजी अदनान लावून एमजीएम 90.8 FM. आणि शहरात 100 कोटी रुपये खर्च करून रस्ते बनवण्यात आले होते. हा ते रस्ते दिसत नाहीये ती वेगळी गोष्ट, खड्ड्यात रस्ता की रस्त्यात खड्डे हेच कळत नाहीये. आणि रस्ते बनवताना प्रशासन एक गोष्ट विसरला, पाईपलाईन टाकायचं. यार इस एरिया में तो पाईपलाईन डालना भूल ही गए थे, तो वापस से पूरे रास्ते खोदे जा रहे. म्हणजे मोठे मोठे खड्डे तिथे होत आहेत आणि त्याच्यात पाईपलाईन वगैरे टाकण्याचं काम सुरू आहे. मतलब प्रशासन काम कैसा करती है पता है, पहले रास्ता बनाती है, फिर उनको याद आता है या पाइपलाइन डालना तो भूल गए, फिर वापस से पूरा रास्ता खोदा जाता है, पाइपलाइन बिछाई जाती है, पैच वर्क किया जाता है. और पैच वर्क कुछ ऐसा तो समझ में आ ही जाता है कि कितना घटिया काम शुरू है. क्योंकि ये सब चीजें आपने देखी होगी सड़कों के पास और जानना रोड के ऊपर, अमरप्रीत चौक और मुंडानाका ब्रिज के नीचे आपने देखा होगा किस तरीके से काम किया गया है. और बारिश के मौसम में तो बहुत ही तकलीफ होती है और वहां पर पानी भी जमा होता है. और भी अपने शहर में बहुत सारी जगह है जहाँ पर पहले रास्ता बनाया था, बाद में प्रशासन को याद आया अरे हम तो भूल ही गए गैस की पाइपलाइन डालना, फिर वापस से रास्ता खोदा गया, फिर बनाया गया, फिर याद आया अरे एक और चीज भूल गए ड्रेनेज सिस्टम, फिर से रास्ता खोदा गया और फिर से बनाया गया. इस तरीके से काम चलता है चलता है चलता ही है. त्यामुळे म्हटलं ना की 100 करोड रुपये लागले होते या पूर्ण प्रोजेक्टला, आणि पुन्हा ते 100 करोड रुपये खड्ड्यात गेले. अब चलता है चलने दो, बल्कि बस चल ही रहा है. और हाँ ऐसे रोड से जाते हो जरा गाड़ी आहिस्ता से चलाइए, आराम से चलाइए, क्योंकि जान है तो जहान है. स्टे ट्यून.

है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

अगर आपके घर अगले कुछ दिनों में कोई BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर आ जाए तो घबराइए मत। आप सुन रहे हो RJ अदनान के साथ MGM 90.8 FM। क्या है ना, दरअसल 30 जून से 29 जुलाई तक महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट स्पेशल वेरिफिकेशन अभियान शुरू है। तो इसके तहत BLO आपके घर आएगी, आपकी जानकारी चेक करेंगे और एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आपको, और फॉर्म भरने के बाद उसकी एक कॉपी आपके पास जरूर रखिएगा। और अगर आपका या आपके परिवार में किसी भी मेंबर का नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है तो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, 10th का मार्कशीट, रहवासी प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, सरकारी और सार्वजनिक उपक्रम या तो फिर आधार कार्ड भी जरूरी है। इनमें से एक डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास हो तो वो आप दिखा सकते हो, क्योंकि यही आपकी एक आइडेंटिटी होती है। तो इस पूरे उपक्रम का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो वोट देने का हकदार है उनका नाम वोटिंग लिस्ट में आ जाए, और अगर किसी की डेथ हो गई है तो उनका नाम उस लिस्ट से निकालने का ये काम है। अगर BLO आपके घर पर आए तो उनको थोड़ी मदद कीजिएगा, क्योंकि आपका वोट ही आपकी पहचान होती है और आपकी आवाज होती है। एंड सुनते रहिए।

मुसाफिर कैफे इस नॉवेल के बारे में तो आपने सुना होगा, या फिर विक्रांत मेसी की एक नई फिल्म आ रही है जो कि नेटफ्लिक्स पे 24 जुलाई को रिलीज होगी। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है और फिल्मी बातों में अपडेट लेते हैं कि नेटफ्लिक्स पर क्या आने वाला है। तो विक्रांत मेसी की फिल्म है मुसाफिर कैफे, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये नेटफ्लिक्स पे 24 जुलाई को रिलीज होने वाली है। मुसाफिर कैफे, ये फिल्म की कहानी बताओ क्या? देखो, मुसाफिर कैफे एक नॉवेल है, उसके ऊपर ये पूरी फिल्म बनी है। दिव्य प्रकाश दुबे ने ये नॉवेल लिखी है। अगर आपने ये नॉवेल रीड की होगी ना, तो आपको फिल्म देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम वही स्टोरी है। देखो, मुसाफिर कैफे मैंने रीड की है, बहुत ही बेहतरीन बुक है वो, और अगर फिल्म देखने तक आपको सब्र नहीं होगा तो आप वो बुक रीड कर सकते हो और तब आपको समझेगा कि ये पूरी ओवरऑल स्टोरी क्या है। एंड खास बात देखो यार, मुझे खुशी इस बात की कि मेरा फेवरेट राइटर है दिव्य प्रकाश दुबे। उनकी बहुत सारे बुक्स है जो कि बेस्ट सेलर का अवार्ड उन्होंने जीता है, जैसे कि अक्टूबर जंक्शन, उसके बाद मुसाफिर कैफे और पापा यार। उनमें से मुसाफिर कैफे फिल्म बनी है और इस फिल्म में विक्रांत मेसी के साथ वेदिका पिंटो एंड महिमा मकवाना ये भी साथ में दिखाई देगी एक साथ। तो एक बार आप ट्रेलर जरूर देखिए इसका और मुझे बताइए कि कैसा आपको ट्रेलर लगा। DM की जगह इंस्टा पर RJ अदनान इस पेज पर एंड स्टे ट्यून्ड।

ये गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा। गानों के किस्से तेरे भी हिस्से में आरजे अदनान आपके साथ है और आज हम बुमरो इस गाने के बारे में बात करेंगे। वैसे बुमरो का मतलब होता है भवरा। ये कश्मीर का ना तो एक लोक संगीत है जो कि शादी से पहले मेहंदी पर गाया जाता है और इस गाने का मतलब होता है कि वो शुक्रिया अदा कर रही है भवरे का जो कि बगीचे से रंग लेकर आया है। गाने की कंपोजिशन ली गई है बोम्बर ता यंबर जल, ये कश्मीर के पहले ओपेरा से। यंबर जल इसका मतलब होता है नरगिस का फूल और बम्बर भी यानी के भवरा। इस गाने का मतलब है कि भवरा दूल्हे के गार्डन से फूलों के रंग लेकर आया है ताकि दुल्हन की मेहंदी का रंग और भी बढ़ जाए। तो अब ये गाना फिर से एक बार सुनते हैं। जब गानों के मतलब समझ में आते हैं ना तो गाने सुनने में और भी मजा आता है। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

गैंगस्टर इस फिल्म से अभी ये गाना आप एंजॉय कर रहे थे आरजी अदनान आपके साथ, और एग्जैक्टली 10:42 का वक्त हो चुका है। एंड क्या हाल चाल एकदम मस्त भाई, आज की मॉर्निंग की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो गई ना, मतलब पूरी बरसात बरसात थी और एकदम मौसम मस्ताना है और वीकेंड अस्ताना अजून काय पाहिजे आयुष्यात यार। भाई तो क्या है आपकी वीकेंड के प्लान्स? वैसे कल तो संडे है, कुछ ना कुछ प्लान होगा, आज भी सैटरडे है। बाय द वे आप सभी के लिए ना तो हम लेकर आए हैं बैड बॉयज गुड शो नाम का एक कॉमेडी शो। कॉमेडी क्या होती है? पोइट्री और कॉमेडी जिसमें मिक्स होती है, दैट्स कॉल्ड कॉमेडी। तो इस स्टैंड अप कॉमेडी शो में ना तो परफॉर्म करने वाले अपने शहर के उभरते हुए कलाकार, जैसे कि एक मैं भी हूँ जिसमें मैं एक नहीं कलाकार उभरता हूँ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कॉमेडी करने का। कॉमेडी सेगमेंट होता है तो आरजी अदनान यानी कि मैं एंड सौरव इंगड़े जो कि स्टैंड अप कॉमेडी है अपने शहर का, और जयेश लोहाड़े, रोहित सूर्यवंशी एंड पवन कदम, ऐसे पाँच हम आर्टिस्ट हैं जो कि परफॉर्म करेंगे। कल इवेंट होगा ये शाम ठीक 5 बजे एवरग्रीन कैफे निराला बाजार रोड यहाँ पर। और सबसे ख़ास बात, एंट्री एकदम फ्री और फ्री रहेगी। तो कल संडे का कोई और प्लान मत बनाइएगा, कल इवनिंग में ठीक शाम 5 बजे ऐसे कॉमेडी और पोइट्री के साथ संडे वाली इवनिंग गुजारिएगा और आइएगा ज़रूर। मैं आप सभी का इंतज़ार कर रहा हूँ एंड फिर से दोहराता हूँ कि एंट्री एकदम फ्री है। बैड बॉयज गुड शो एवरग्रीन कैफे निराला बाजार रोड छत्रपति संभाजीनगर में वेलकम है आपका। और बाकी अब एंजॉय करते हैं अगला बढ़िया सा गाना जन्नत 2 इस फिल्म से। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक. आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी. MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6. कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130. MGM पेट केअर.
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप.
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा.
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
3: डिनर का मूड हो या फैमिली आउटिंग, टेस्ट और MBS दोनों चाहिए तो आ जाइए मीनास किचन. यहाँ मिलेंगी डिलीशियस वेज नॉन वेज सूप, टेस्टी स्टार्टर्स, मलाई टिक्का कबाब, चिकन तंदूरी, मटन बुना और मीना स्पेशल चिकन बिरयानी, रूफ टॉप एम्बियंस, अमेजिंग टेस्ट और फुल फैमिली वाइब्स. मीनास किचन फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट एंड चीयर्स कॉर्नर, बॉम्बे हाइट्स 9th फ्लोर, बीड बाईपास रोड, छत्रपति संभाजी नगर.
1: एडमिशन ओपन MGM यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन. फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar.

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

0: परफेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शनिवार की इस खूबसूरत शाम में आपका दिल से स्वागत करती हूं। उम्मीद है आपका पूरा हफ्ता अच्छा रहा होगा और अब वक्त है थोड़ा सा रिलैक्स करने का। चाय की चुस्किया हो, दोस्तों का साथ हो या फिर परिवार के साथ बिताया कुछ खास पल, इस शाम को और भी यादगार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके पसंदीदा गाने और ढेर सारी अच्छी वाइब्स। तो जहाँ भी है, जो भी कर रहे हैं, बस मुस्कुराइए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में सुनने को मिलेगा ऐसे गाने जो आपके वीकेंड का मूड और भी बेहतर बना देंगे। अगर आपका भी कोई फेवरेट गाना है या किसी अपने के लिए कोई प्यारा सा मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। हो सकता है आपका संदेश और आपकी पसंद हमारे शो का हिस्सा बन जाए। यू कैन शेयर विथ मी थ्रू माई इंस्टा हैंडल। मेरी इंस्टा आईडी है rjmanisha_। तो बिना किसी इंतज़ार के बढ़ाते हैं इस शानदार शाम का सिलसिला। वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए, मुस्कुराइए और इन्जॉय कीजिए अपने पसंदीदा गानों के साथ कुछ दिलचस्प बातें। और आप सुनते रहिए हमारा फेवरेट शो दिल से ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक होता है तो कभी कुछ बातें हमारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग। लेकिन कहते हैं ना, हालात हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते, पर उन्हें देखने का नज़रिया ज़रूर हमारे हाथ में होता है। कभी कभी छोटी सी मुस्कान, किसी की एक अच्छी बात या अपने लिए निकाला गया थोड़ा सा वक्त पूरे दिन का मूड बदल देता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर ढूंढे। हो सकता है कि आज की सबसे छोटी खुशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। अगर कोई काम आज पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। हो सकता है कल आपके लिए कोई और बेहतर मौका इंतज़ार कर रहा हो, इसीलिए उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िए। याद रखिए, पॉजिटिव रहना मतलब ये नहीं कि मुश्किलें नहीं हैं, इसका मतलब है कि मुश्किलों के बीच भी आगे बढ़ने की हिम्मत बनाए रखना। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, कम शिकायतें करेंगे, ज़्यादा शुक्रिया कहेंगे, कम चिंता करेंगे, ज़्यादा मुस्कुराएंगे और हर नए दिन का स्वागत एक नई उम्मीद के साथ करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड जिम नाडी पॉजिटिव फिल्म साथ है तो बात है।

आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शनिवार के इस प्यारी सी बारिश वाली शाम में आपका दिल से स्वागत है। वो अगर बारिश नहीं भी हो रही, हो भी रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मौसम जो बारिश वाला है तो फीलिंग भी बारिश वाली ही है। बाहर हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवाएं और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, ऐसा मौसम अपने आप में ही दिल को सुकून देने वाला होता है। ये सिनेरियो बस इमेजिन कर लो ना तो दिल खुश हो जाता है। किसी के हाथ में गर्मा गर्म चाय का कप होगा, कोई खिड़की के पास बैठकर बारिश का मजा ले रहा होगा, तो कोई इस मौसम में अपने दोस्तों या परिवार के साथ छोटी सी ड्राइव पर निकल गया होगा। यार ऐसा आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा करेंगे। वो अगर बारिश हो रही हो तो चले जाइए, और अगर नहीं भी हो रही है तो सोचने में बुराई क्या है। और अगर आप कहीं सफर में है तो उम्मीद है हमारा साथ आपकी इस बारिश वाली शाम को और भी खूबसूरत बना रहा होगा। और ये फीलिंग है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। शनिवार की शाम वैसे भी पूरे हफ्ते की थकान को पीछे छोड़ने का नाम है, और जब मौसम भी इतना सुहाना हो तो बस अच्छी म्यूज़िक की कमी हो जाती है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों तक आपके साथ रहेंगे एक से एक बढ़कर शानदार गाने जो इस मानसून वाली फीलिंग को और भी खास बना देंगे। तो बारिश की हर बूंद, हर मुस्कान और इस खूबसूरत वीकेंड को सेलिब्रेट कीजिए हमारे साथ। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, रिलैक्स हो जाइए और इसे सुहानी शाम का पूरा आनंद लीजिए। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से, ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। अब जिस गाने के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो भी एक ऐसा ही कलेजिया नगमा है जिसका नाम है ना तो कारवा की तलाश है। इस गीत की सबसे बड़ी खूबी है इसकी गहराई, इसकी शायरी और इसकी खूबसूरत पेशकश जो आज भी सुनने वाले के दिल को छू जाती है। पुराने दौर के संगीत में जो सादगी, नज़ाकत और एहसास था वही इस गीत में भी साफ झलकता है। हर बार इसे सुनने पर कोई नई बात, कोई नया एहसास दिल में उतर जाता है। शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी ये गीत अपनी चमक और अपनी पहचान बनाए हुए हैं। अगर आपको पुराने फिल्मी गीत, शानदार शायरी और दिल को सुकून देने वाला संगीत पसंद है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। तो अपनी भागदौड़ को थोड़ी देर के लिए विराम दीजिए, आवाज़ थोड़ा सा बढ़ाइए और इस सदाबहार गीत का आनंद लीजिए। और आप लोग कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए MJ मनाली पॉइंट FM, साथ है तो बात है।
1: पाड़ी प्राणायाम आरोग्य चाहता खास काळजी MGM पेट केयर पेट क्लिनिक, आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशु वैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6, कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केयर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
4: ऍडमिशन ओपन MGM University School of Engineering and Technology. Programs B.Tech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आ गया है शनिवार, यानी पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने, अपने पसंदीदा लोगों के साथ वक्त बिताने और सबसे ज़रूरी अपने मूड को रिफ्रेश करने का दिन। तो अगर आपका दिन थोड़ा बिजी रहा है या फिर आप बस इस शाम को और भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि अगले कुछ मिनटों तक हम लेकर आए हैं एक ऐसी सैटरडे प्लेलिस्ट जो आपके मूड को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कभी संगीत हमें मुस्कुराने की वजह देता है, कभी पुरानी यादों से बलवाता है तो कभी नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का एहसास, और यही तो इस शाम का असली मज़ा है। अच्छा संगीत, अच्छी वाइब्स और बिना किसी टेंशन के कुछ अपने पल। तो चाहे आप घर पर हो, दोस्तों के साथ हो, सफ़र में हो या फिर बारिश वाली इस शाम का मज़ा ले रहे हो, बस वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए और सारी टेंशन को थोड़ी देर के लिए पॉज पर रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सैटरडे प्लेलिस्ट, जिसमें होंगे एक से बढ़कर एक शानदार गाने जो आपकी शाम को और भी यादगार बना देंगे। मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से, ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ ही तो

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टल दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। शनिवार की शाम हो, मौसम सुहाना हो और बात मूवी नाइट की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वीकेंड का सबसे मज़ेदार प्लान क्या होता है पता है? एक अच्छी सी फिल्म, कुछ पसंदीदा स्नैक्स, आरामदायक जगह और अपने खास लोगों के साथ, बस इससे बेहतर कॉम्बिनेशन शायद ही कोई हो। अगर अभी तक आपने आज की शाम का कोई प्लान नहीं बनाया तो क्यों ना आज एक शानदार मूवी नाइट प्लान की जाए। चाहे घर पर फैमिली के साथ कोई क्लासिक फिल्म देखिए, दोस्तों के साथ कॉमेडी का मज़ा लीजिए या फिर किसी नई रिलीज़ के साथ वीकेंड को थोड़ा और स्पेशल बना दीजिए। और हाँ, मूवी का असली मज़ा तब आता है जब साथ में हो गर्मा गर्म पॉपकॉर्न, चिप्स या फिर आपकी पसंदीदा चाय और कॉफ़ी। छोटी छोटी चीज़ें ही तो शाम को शानदार बना देती है। लेकिन इससे पहले क्यों ना इस मूवी मूड की शुरुआत कुछ शानदार गानों से की जाए, क्योंकि अच्छे संगीत हर अच्छे प्लान की परफेक्ट शुरुआत होती है। तो अपनी मुस्कान बनाए रखिए, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए और हमारे साथ इस शनिवार की शाम को और भी खास बनाइए। आप कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आखिरकार वीकेंड आ ही गया। पूरे हफ्ते की भागदौड़, काम की डेडलाइंस और रोज़मर्रा की व्यस्तता के बाद अब वक्त है खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालने का। तो बताइए, इस वीकेंड का क्या प्लान है? कहीं घूमने का मन है, दोस्तों से मिलने का, परिवार के साथ कुछ खास पल बिताने का, या फिर बस घर पर आराम करते हुए अपनी पसंदीदा फिल्में और गाने एंजॉय करने का? याद रखिए, हर वीकेंड को बड़ा या महंगा बनाना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी एक कप चाय, अच्छी सी किताब, लंबी वॉक, अपने पसंदीदा गाने या अपनों के साथ बिताया थोड़ा सा वक्त भी पूरे हफ्ते की थकान मिटा देता है। तो इस बार अपने वीकेंड में एक छोटी सी चीज़ ज़रूर शामिल कीजिए जो आपको सच में खुशी दे, क्योंकि जब मन खुश होता है तो आने वाला पूरा हफ्ता भी नई एनर्जी के साथ शुरू होता है। और अगर अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। हम आपके इस वीकेंड की शुरुआत करेंगे शानदार गानों के साथ जो आपके मूड को और भी बेहतरीन बना देगा। तो रिलैक्स कीजिए, मुस्कुराइए और इस खूबसूरत वीकेंड का भरपूर आनंद लीजिए। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। देखते देखते शनिवार की एक खूबसूरत शाम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुँच गई है। उम्मीद है कि आज का ये सफ़र हमारी बातें और आपके पसंदीदा गानों ने आपकी शाम को थोड़ा और मुस्कुराने की वजह दी होगी। वीकेंड की सबसे अच्छी बात यही होती है कि ये हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी सिर्फ काम की नहीं बल्कि अपने लिए, अपने अपनों के लिए और छोटी छोटी खुशियों के लिए भी है। अगर आज आपने खुलकर हंसा है, थोड़ा रिलैक्स किया है या आपने किसी अपने के साथ कुछ अच्छे पल बिताए हैं तो समझिए आपका शनिवार सफल रहा। अब शनिवार विदा ले रहा है लेकिन वीकेंड अभी बाकी है। कल का दिन नई उम्मीदों, नए प्लान्स और ढेर सारी अच्छी यादें बनाने का मौका लेकर आएगा। इसलिए आज की अच्छी एनर्जी और मुस्कान को कल तक ज़रूर साथ लेकर जाइए। हमारी तरफ से बस यही कहना है कि हर दिन में खुशी ढूंढिए, अपनों के साथ वक्त बिताइए और संगीत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखिए क्योंकि अच्छे गाने सिर्फ कानों तक नहीं दिल तक पहुँचते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपने वीकेंड का भरपूर आनंद लीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा और आप सुन रहे हैं दिल से ओनली ऑन एमजीएम रेडियो पौने एफएम। साथ है तो बात है।
1: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याच्या खास काळजी एमजीएम पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। एमजीएम क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। एमजीएम पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: एमजीएम विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। Also direct admission in B Pharmacy second year. Avail attractive scholarships.
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: For admission contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.
4: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati, Sambhajinagar.

गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा। गानों के किस्से तेरे मेरे हिस्से में आरजे अदनान आपके साथ है और आज हम बुमरो इस गाने के बारे में बात करेंगे। वैसे बुमरो का मतलब होता है भवरा। ये कश्मीर का ना तो एक लोक संगीत है जो कि शादी से पहले मेहंदी पर गाया जाता है और इस गाने का मतलब होता है कि वो शुक्रिया अदा कर रही है भवरे का जो कि बगीचे से रंग लेकर आया है। गाने की कंपोजिशन ली गई है बोम्बर ता यंबर जल, ये कश्मीर के पहले ओपेरा से। यंबर जल इसका मतलब होता है नरगिस का फूल और बम्बर भी यानी के भौरा। इस गाने का मतलब है कि भौरा दूल्हे के गार्डन से फूलों के रंग लेकर आया है ताकि दुल्हन की मेहंदी का रंग और भी बढ़ जाए। तो अब ये गाना फिर से एक बार सुनते हैं, जब गानों के मतलब समझ में आते हैं ना तो गाने सुनने में और भी मजा आता है। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

होटल में तो हम सभी लोग खाना खाते हैं, लेकिन वो खाना सच में उतना सेफ और उतना हाइजीनिक है क्या, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है और इसी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फिलहाल FDA एक्शन मोड पर आ चुकी है एंड अपने शहर के जितने भी होटल्स है ना, तो उन सभी होटल्स में चेकिंग शुरू हो चुकी है और इस चेकिंग में कुछ ऐसे ऐसे चीजें सामने आई कि लग रहा है कि भाई साहब आज तक तो हम बस जहरीला खाना खाते थे, वेज नॉन वेज कुछ भी हो जाए हर किसी के अंदर मिलावटी है। तो ऐसे मिलावटी चीजें ना तो अपने शहर के दो होटल में मिली थी और कार्रवाई ऐसी शुरू है और उन दो होटल्स के जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिए गए है और बस होटल से रही जो जूस सेंटर है वहाँ पर भी FDA फिलहाल चेकिंग कर रहा है जिस तरीके से जूस बनता है वो हाइजीनिक है या उसमें भी कुछ मिलावट तो नहीं है ना, तो इन सभी बातों को देखा जाएगा और भी शहर में जितने भी बिजनेस है जो कि खाने से रिलेटेड है उन सभी के ऊपर FDA फिलहाल चेकिंग कर रहा है। FDA ने जो स्टूडेंट्स के लिए मेस होती है ना तो उसमें एक बार चेकिंग करना चाहिए, तो आधे से ज्यादा मेस बंद हो जाएगी अपने शहर के, क्योंकि भाई हम भी तो मेस का खाना खाते हैं और हमें पता है मेस का खाना कैसा होता है। ये क्या ही बोले अब अपने लफ्जों से, कभी खाइएगा तब आपको पता चलेगा कि दाल क्या होती है। स्टे ट्यून्ड।

एक सवाल है, अगर आपको ना मतलब आपके मन से किसी सिंगर को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड देना हो तो पहला नाम कौन सा आएगा आपके दिमाग में? आप सुन रहे हो आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM। अभी सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने एक शानदार पहल की है। द लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले जी के नाम पर संगीत जीवन गौरव पुरस्कार शुरू किया है। ये सम्मान उन कलाकारों को दिया जाएगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित की है, और हर साल 8 सितंबर यानी आशा भोसले जी के जन्मदिन पर यह अवार्ड दिया जाएगा। सच कहे तो कलाकार सिर्फ गाने नहीं गाते, वो यादें बन जाते हैं, और ऐसे कलाकारों का सम्मान होना भी बहुत जरूरी है। और सौर सम्राज्ञी आशा भोसले जी के नाम पर ये अवार्ड की शुरुआत की जा रही है, सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि आशा भोसले जी एक ऐसा नाम है जिसने अपनी आवाज से हर दौर, हर पीढ़ी और हर एक दिल को छुआ है। ऐसे में उनके नाम पर शुरू होने वाला यह सम्मान सच में सभी कलाकारों को एक प्रेरणा देने का काम करेगा। तो अब आशा भोसले जी की बात हो ही रही है, तो अब आशा भोसले जी की आवाज में एक बढ़िया सा गाना हम एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: मुसाफिर कैफे इस नॉवेल के बारे में तो आपने सुना होगा, या फिर विक्रांत मेसी की एक नई फिल्म आ रही है जो कि नेटफ्लिक्स पे 24 जुलाई को रिलीज होगी। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है और फिल्मी बातों में अपडेट लेते हैं कि नेटफ्लिक्स पर क्या आने वाला है। तो विक्रांत मेसी की फिल्म है मुसाफिर कैफे, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये नेटफ्लिक्स पे 24 जुलाई को रिलीज होने वाली है। मुसाफिर कैफे, ये फिल्म की कहानी बताओ क्या? देखो, मुसाफिर कैफे एक नॉवेल है, उसके ऊपर ये पूरी फिल्म बनी है। दिव्य प्रकाश दुबे ने ये नॉवेल लिखी है। अगर आपने ये नॉवेल रीड की होगी ना, तो आपको फिल्म देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम वही स्टोरी है। देखो, मुसाफिर कैफे मैंने रीड की है, बहुत ही बेहतरीन बुक है वो। और अगर फिल्म देखने तक आपको सब्र नहीं होगा, तो आप वो बुक रीड कर सकते हो और तब आपको समझेगा कि ये पूरी ओवरऑल स्टोरी क्या है। एंड खास बात देखो यार, मुझे खुशी इस बात की कि मेरा फेवरेट राइटर है दिव्य प्रकाश दुबे। उनकी बहुत सारे बुक्स है जो कि बेस्ट सेलर का अवार्ड उन्होंने जीता है, जैसे कि अक्टूबर जंक्शन, उसके बाद मुसाफिर कैफे और पापा यार। उनमें से मुसाफिर कैफे फिल्म बनी है और इस फिल्म में विक्रांत मेसी के साथ वेदिका पिंटो एंड महिमा मकवाना ये भी साथ में दिखाई देगी एक साथ। तो एक बार आप ट्रेलर जरूर देखिए इसका और मुझे बताइए कि कैसा आपको ट्रेलर लगा। DM की जगह इंस्टा पर RJ अदनान इस पेज पर एंड स्टे ट्यून्ड।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन Open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhaji.
0: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।

0: 100 कोटी रुपये गेले खड्ड्यात.
1: खरं सांगतोय मी नाही, प्रशासनाने गेले. तुम्ही ऐकत आहात आरजी अदनान लावून MGM 90.8 FM. आणि शहरात 100 कोटी रुपये खर्च करून रस्ते बनवण्यात आले होते. हा ते रस्ते दिसत नाहीये ती वेगळी गोष्ट, खड्ड्यात रस्ता की रस्त्यात खड्डे हेच कळत नाहीये. आणि रस्ते बनवताना प्रशासन एक गोष्ट विसरला, पाईपलाईन टाकायचं. यार इस एरिया में तो पाईपलाईन डालना भूल ही गए थे, तो वापस से पूरे रास्ते खोदे जा रहे, म्हणजे मोठे मोठे खड्डे तिथे होत आहेत आणि त्याच्यात पाईपलाईन वगैरे टाकण्याचं काम सुरू आहे. मतलब प्रशासन काम कैसे करती है पता है, पहले रास्ता बनाती है, फिर उनको याद आता है या पाइपलाइन डालना तो भूल गए, फिर वापस से पूरा रास्ता खोदा जाता है, पाइपलाइन बिछाई जाती है, पैच वर्क किया जाता है. और पैच वर्क कुछ ऐसा तो समझ में आ ही जाता है कि कितना घटिया काम शुरू है, क्योंकि ये सब चीजें आपने देखी होगी सड़कों के पास और जानना रोड के ऊपर, अमरप्रीत चौक और मुंडनाका ब्रिज के नीचे आपने देखा होगा किस तरीके से काम किया गया है. और बारिश के मौसम में तो बहुत ही तकलीफ होती है और वहां पर पानी भी जमा होता है. और भी अपने शहर में बहुत सारी जगह है जहां पर पहले रास्ता बनाया था, बाद में प्रशासन को याद आया अरे हम तो भूल ही गए गैस की पाइपलाइन डालना, फिर वापस से रास्ता खोदा गया, फिर बनाया गया, फिर याद आया अरे एक और चीज भूल गए ड्रेनेज सिस्टम, फिर से रास्ता खोदा गया और फिर से बनाया गया. इस तरीके से काम चलता है चलता है चलता ही है. त्यामुळे म्हटलं ना की 100 करोड रुपये लागले होते या पूर्ण प्रोजेक्टला आणि पुन्हा ते 100 करोड रुपये खड्ड्यात गेले. अब चलता है चलने दो, बल्कि बस चल ही रहा है. और हाँ, ऐसे रोड से जाते हो जरा गाड़ी आहिस्ता से चलाइए, आराम से चलाइए, क्योंकि जान है तो जहान है. स्टे ट्यून्ड.

अगर आपके घर अगले कुछ दिनों में कोई BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर आ जाए तो घबराइए मत। आप सुन रहे हो RJ अदनान के साथ MTM 90.8 FM। क्या है ना, दरअसल 30 जून से 29 जुलाई तक महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट स्पेशल वेरिफिकेशन अभियान शुरू है। तो इसके तहत BLO आपके घर आएगी, आपकी जानकारी चेक करेंगे और एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आपको, और फॉर्म भरने के बाद उसकी एक कॉपी आपके पास जरूर रखिएगा। और अगर आपका या आपके परिवार में किसी भी मेंबर का नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है तो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, 10th का मार्कशीट, रहवासी प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, सरकारी और सार्वजनिक उपक्रम या तो फिर आधार कार्ड भी जरूरी है। इनमें से एक डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास हो तो वो आप दिखा सकते हो, क्योंकि यही आपकी एक आइडेंटिटी होती है। तो इस पूरे उपक्रम का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो वोट देने का हकदार है उनका नाम वोटिंग लिस्ट में आ जाए, और अगर किसी की डेथ हो गई है तो उनका नाम उस लिस्ट से निकालने का एक काम है। अगर BLO आपके घर पर आए तो उनको थोड़ी मदद कीजिएगा, क्योंकि आपका वोट ही आपकी पहचान होती है और आपकी आवाज होती है। एंड सुनते रहिए।

इमरजेंसी कब कहां किस तरीके से आ जाए कुछ पता नहीं चलता, तो इसीलिए महानगर पालिका एकदम एक्शन मोड पर आ गई है। यू आर लिसनिंग MTM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका ने अपने सिटीजंस की सेफ्टी के लिए इमरजेंसी कंट्रोल रूम शुरू किया है और इस कंट्रोल रूम का उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिस पर आप कॉल कर सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, कहीं आग लग गई उसके लिए, या फिर कोई भी इमरजेंसी आपको शहर में नजर आई, जरूरत है आपको हेल्प की, तो आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट का नंबर है 02402617165, ये नंबर है, और 2617166 एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है जिसके जरिए आप व्हाट्सएप पर शहर में कुछ भी हो जाए उसकी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो या तो फिर हेल्प भी मांग सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9823270782, नंबर याद रखिए, फिर से दोहराता हूँ 9823270782। और ये नंबर की डिटेल आपको ना महानगर पालिका की सोशल मीडिया हैंडल पर मिल ही जाएगी, तो याद रखिए ये, और कोई भी इमरजेंसी हो आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा और ये नंबर अपने मोबाइल में सेव करके रखिए क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। स्टे ट्यून्ड।

0: एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है।

0: लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी। उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FM 90.8।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।